0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: मैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: MBBS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: 89.6 पे रेडियो DS, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने

0: में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो मैम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्ते।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
1: हेलो
2: सर, नाम बताएं आपका।
1: प्रियांशु।
2: प्रियांशु जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: वेदांग हॉस्टल।
2: वेदांग हॉस्टल से। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: फॉर्चुनर।
2: हाँ जी,
1: फॉर्चुनर
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का फॉर्चुनर सॉन्ग।

0: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस अकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस अकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
1: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
2: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें।

0: दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए हम तैयार हैं।
0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार
0: सर। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: शहजाद खान पुराने निजामत।
0: शहजाद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप आज?
1: गाना लिख लो आप।
0: बताएं सर।
1: मोहम्मद रफीक की आवाज में लिख लो।
0: ठीक है सर, सुना रहे हैं आपको आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों

0: छुप गए सारे।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस, यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीणा के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या YouTube पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।
4: हेलो जी, नाम बताएं सर।
5: सर राजू लवानिया बोल रहा हूँ आगरा उत्तर प्रदेश से।
4: राजू लवानिया जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
5: अखियों के झरोखे से का टाइटल सॉन्ग।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
1: मेरा नाम है सोहेल सैफी।
0: सोहेल सैफी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी राजीव कॉलोनी गंगापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी आप सुनना चाहते हैं पल पल जीना मोहाल मेरा तेरे बिना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का एक।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो जी, नाम बताएं।
3: अमित।
2: अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: नसिया से।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: अभी तो पार्टी हुई है।
2: बिल्कुल।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
1: सर मेरा नाम अय्यूब सलमानी।
0: अय्यूब सलमानी जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
0: बिल्कुल।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: विवेक कुमार वाली।
0: विवेक कुमार वाली जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नशे कॉलोनी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कमल तेरी लेफ्ट राइट आलम।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी वॉइस पर।

0: जी नमस्ते, नाम बताएं। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जाता
0: हूँ। बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जिंदगी और बरसाती राधा क्या है,
0: जिनको सुना रहे हैं ये।

0: हेलो नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: तुलसीराम जी बताएं, रेडियो डीए से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सरकती जाए है रुख से नकाब आहिता आहिता।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन।

0: नीता जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हो?
1: मेरी ढूंढना।
0: वो मेरी ढूंढना। नीता जी सुना रहे हैं आपका किस समय से बेहतरीन सा गाना रेडियो।

0: हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: हाँ, रतनलाल बोल रहा हूँ, मऊ कला से।
1: रतनलाल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: आप? हाँ, सुना दो बाबुल प्यारे, रोए पायल की डम डम के तुझको नितु पुकारे हम।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ रतनलाल जी, आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं।
1: मुस्ताक बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी,
1: मुस्ताक बोल रहा हूँ, गंगापुर सिटी से।
0: मुस्ताक जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: सर? वो है ना गाना, आंखें भरी भरी मुस्कुराने की बात करते हो।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ मुस्ताक जी आपको, आपकी सर्विस से बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया तुमने।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से सुहानी सुबह में प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
1: नमस्कार सर आपको और आपके सभी मित्र जनों सभी श्रोताओं को। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
0: आज मुझे जो गीत सुनना है पिक्चर का नाम है सुल्तान। गीत है जग भूमिया थारे जैसा ना देखिया कोई।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी प्रोवाइस का बेहतरीन सा गाना रेडियो। धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर। ओ बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
2: आज मुझे जो गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है सुल्तान।
1: सर आपकी प्रोवाइस का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद। हेलो
3: नमस्ते
1: जी, नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
3: चौधरी, निवेदन कर रहा हूँ।
1: चौधरी जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप आज?
3: दुपट्टा सरक रहा है।
1: बिल्कुल सुना रहे चौधरी जी आपका, आपकी प्रोवाइस का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग जी, नाम बताएं।
0: सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रही हूँ सर।
1: मोनिका जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: खिलौना जान के मेरे दिल को तो जाते हो।
1: बिल्कुल मैम, सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
0: मोहतरमा।
1: हाँ जी,
0: मोहतरमा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं गुलशन जी आपका, आपकी समझ का ये गाना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस, यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो,
2: नमस्ते,
1: मनिका।
2: हेलो जी, नाम बताए।
3: शुभम
2: कुछ।
4: मोनिका जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे कॉलोनी।
4: बताएं मोनिका जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: इसके दी गली विच कोई कोई लंगड़ा।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का गाना।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट।
5: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।

0: हेलो
1: नाम बताए
0: सर। नमस्कार, महावर
1: ब्रजपुर महावर जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: ये सर ये गाना है रोटी का है, पुराना है, मुँह पे चटनी पिसावे।
1: कौन सा गाना है सर?
0: मुँह पे चटनी पिसावे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश करिएगा।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:11:21 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: हेलो
4: जी, नाम बताएं।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ सर नमस्ते।
4: हाँ नमस्ते, क्या नाम? मैडम ठीक हो?
3: हाँ सर ठीक है सर। नाम क्या है
4: आज?
3: सर यहाँ पर ही है ना।
4: मौसम कैसा आज?
3: मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है।
4: हाँ आप ठीक है?
3: हाँ ठीक है सर।
4: हाँ लव वारिस फिल्म का सुनना है।
3: सर नाम क्या है आपका?
4: लतीफा मदरीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: कश्मीर से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: लव वारिस फिल्म।
3: लव वारिस?
4: हाँ लव वारिस।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिणाम

0: थोड़ा बताओ सर।
1: पतली पतली कमर ठोकती पैदल कैर करे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं। पतली पतली

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस, यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस का।
4: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
5: सावित्री।
4: कहाँ से बात कर रही हो?
5: गंगापुर से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
5: कोका।
4: कोका? हाँ ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: पुराना वाला?
4: हाँ मैम।
5: और
4: हेलो,
5: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
5: सोनम।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सोनम गुर्जर।
0: कहाँ से बात कर रही
1: हूँ?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: रशिया।
0: कौन सा?

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम रविंद्र मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सवाई माधोपुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

यार मैं तेरी ना एक गल करनी है। मैंने ना सीरत बहुत चंगी लगती है। देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, लेटर होते तक पहुंचा दे। तू मेरे लिए इन्ना नहीं कर सकती?

0: मैनू कबूल है तेरा हर दुख सुख, मैनू कबूल है तेरा हसना रोना, ते मैनू कबूल है तेरा हर वो लफज जो बिना कहे बुलां तो बयान हुंदा तेरी अख चो। साडी जिंदगी अज उस मोड़ ते है जिथे तू मैनू छड़ना नहीं ते मैं तेनू छड़ नहीं सकदा, इसे करके तो कहा मैनू लगता प्यार मेरा जाऊगा।
1: हुण लोकी कहते मर के नी नाल कुछ जांदा, मैनू लगता प्यार मेरा जाऊगा। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना सिंगल गाना आ चुका है फोटो, ते जे चंगा लगे तो शेयर जरूर कर दिओ, ते होर गाने लई सबसक्राइब करो स्पीड रैकड चैनल। थैंक यू थोड़ा।

0: दोस्तों अभी आपने सुना हेलो फरमाइस कार्यक्रम। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दोस्तों थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद नए तराने लेकर। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में

गुड आफ्टरनून गंगा बुड़सरी, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसिविना। दोस्तों लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम को करते हैं शुरू और सुनते हैं प्यारा सा के एक ट्रैक, लौट कर आते हैं इस ट्रैक के बाद, फिर बात करेंगे मौसम संबंधित जानकारी।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।

दोस्तों फिलहाल आप टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त रेसे बिना। चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। गर्मी में महिलाएं परिवार का ध्यान रखें और स्वस्थ और पूर्ण संपूर्ण हर चीज का ध्यान रखें। दोस्तों गर्मी के मौसम आते ही हमारे घर में खुशी के साथ साथ चिंता भी आ जाती है। लू, डिहाइड्रेशन, पेट की बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम और थकान, इस मौसम में बहुत सी सेहत की जिम्मेदारियां अक्सर महिलाओं पर आ जाती है। क्योंकि आप माँ, बहू, बेटी या पत्नी जो भी भूमिका निभा रही है वो घर की एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में होती है। आज इसी भूमिका को मजबूत और कुछ व्यवहारिक ज्ञान से प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे रेडियो डीएस के माध्यम से। दोस्तों परिवार में सबसे पहले हमें जल योजन बनाने की आवश्यकता है। जल योजन मतलब सबसे बड़ा हथियार। पानी में सबसे पहले ध्यान रखें कि परिवार के सभी सदस्यों को, हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। सादा पानी के साथ नींबू, छाछ, लस्सी, नारियल और पानी, खजूर, आम का और अन्य जो फल होते हैं उनका जूस, सत्तू का शरबत और पुदीने की छाछ से बार बार पिलाते रहें। दोस्तों जब भी हम काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं उस समय हमें पानी की बोतल ठंडी अवश्य साथ रखने की आदत डालें।

दोस्तों हमारी डाइट यानी आहार ठंडा और पौष्टिक, गर्मी से भारी तला भुना मसालेदार और मीठा खाने से बचें। सुबह का नाश्ता में हल्का रखें, दही फल पुआ उपमा चावल खिचड़ी, दोपहर के भोजन में रोटी की जगह चावल दाल सब्जी और सलाद खूब भरपेट खाएं। फल अवश्य बॉडी के लिए जरूरत भी होती है, तरबूज खरबूजा आम संतरा पपीता ककड़ी, ये भी शरीर को ठंडक और विटामिन देते हैं, साथ ही हमारी बॉडी में पानी की पूर्ति को भी दूर कर देते हैं। दोस्तों सभी को ध्यान रखना जरूरी है, शाम को फ्रूट या सलाद सत्तू का शरबत दे, रात को खाना हल्का दही चावल खिचड़ी या सूप ले। गर्मी में बचने के सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं उन्हें बार बार पानी पिलाएं, स्कूल से आते ही नहलाएं, हल्का भोजन दें, बाहर खेलने का समय सुबह 8 बजे तक या शाम 5 बजे के बाद रखें, और घर में दोस्तों ORS का घोल अवश्य रखें। बच्चों को यदि पानी की कमी होती है या लू या अन्य चीज़ें जैसे होती है तो ORS का या इलेक्ट्रॉनिक पाउडर बहुत आवश्यक रखें।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
3: मेरी दादी बोलती है तेरे शादी कभी नहीं होगी। दादी बोलती है तो दुनिया में सबसे अलग है।
4: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, आपके अपने ऋषि मीना के साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए 89.6 डीएस एफएम पे
0: दुर्गापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीणा के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

तो वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करे थी 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: याद है।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: तो सुबह हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे भूली विसरी यादें कार्यक्रम, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 96 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: दोस्तों अभी आपने सुना बैक टू बैक गानों का ये कार्यक्रम। फिलहाल आप मेरे साथ टून कर रहे 99.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों संध्या के 4 बज चुके हैं, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपके बीच आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम राजस्थानी गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: में रेडियो डीएस,
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
2: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
1: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: वक्त हो चुका है 4:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हेलो
3: सर, नमस्ते।
2: नमस्कार
3: सर, नाम क्या है आपका?
2: बाबू खान।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर से जी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: आपकी इनार से आपकी।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है अजय परवान है।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं पहला नशा पहला खुआ।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो
3: हेलो जी, नमस्कार जी।
2: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे? हेलो
3: हेलो,
2: हाँ सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: फिल्म का नाम है असली नट।

0: सारे
1: ओके मैम सुना रहे हैं आपको, फरमाइश करिएगा। हाँ जी नाम क्या है आपका?
2: हेलो
1: जी नाम क्या है? गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? थोड़ा सही बोलो मैम, आवाज नहीं आ रही, गलत लग जाएगा गाना।
2: तेरे नाल चल रही है सिंह कोई ना।
1: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

वक्त हो चुका है 4:50 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है सेजाद खान जी की। सेजाद खान जी ने हमें कॉल किया है पुरानी निजामत गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: गुड इवनिंग, नमस्कार।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप।

0: जय भवानी पलक जी।
1: जय भवानी मामा जी।
0: नाम बताइए। नाम विमल शर्मा है, मंगला में रहते हैं
1: जी। मामा जी कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सजनवा बैरी हो गए।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रही हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: 2003 और 2002।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: व्हाट इज दिस शिट? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: सो व्हाट? मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: यू नो शेफ, इट रियली हर्ट्स.

0: आरबी
1: सुनकर। कहाँ से बात कर रही हूँ? कौन सा गाना सुनना चाहोगे आरबी जी? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSS।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर के धुन।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
4: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का, सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: मैजिक रेडियो
1: DS 89.6
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: करते हैं
1: गंगापुर सिटी की धरतर।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: पर।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: गंगापुर सिटी की धरती।
1: तेरे वास्ते गाना सुना आपने वरुण जैन, शादाब अल्तमाश की आवाज में, सचिन जिगर की आवाज में। लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया। और सर्दियों वाली मॉर्निंग यानी विंटर मॉर्निंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनना कि विंटर मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा कोल्ड और बहुत ही ज्यादा फॉगी रहता है, जिससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, वो है गर्म कपड़े पहनना, वुलन कपड़े पहनना। और कई बार जब हम ऐसे मुंह खोल के बाहर सांस छोड़ते तो हमें फॉग नजर आते हैं। आपको नहीं पता था ना, झूठ मत बोला, आपको नहीं पता था। ऐसे ही और बचकाने फैक्ट के साथ, इम्पोर्टेंट विंटर फैक्ट के साथ मैं वापस आऊंगा, लेकिन बैक टू बैक पहले तीन गाने आपके लिए।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सिटी के घर पर।
1: देखो अगर आपके गले में खराश है तो मेरे साथ रिपीट करो, चलो 1 2 3। नहीं नहीं ये पार्ट आपको नहीं करना है। अर्जुन वेली गाना सुना आपने फ्रॉम द फिल्म एनिमल, संग बाय बब्बल। बब्बल बब्बल जी ने बहुत ही प्यारा गाना गाया भूपेंद्र बब्बल जी ने, लेकिन उससे भी प्यारा मैं एक स्पॉइलर तो है ही नहीं भैया। गंगापुर सिटी में अगर किसी ने, एक बंदे ने भी फिल्म देख ली, मतलब पूरे शहर ने भैया फिल्म देख लिया, और फिल्म एनिमल भैया 1,000 करोड़ के इतने करीब। बस मुझे यही फैक्ट बताना था, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, फिलहाल आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगा। चलो अमेजिंग गाने बजा रहा हूं मैं आपके लिए, 4 गाने बैक टू बैक।

0: सुपर स्थिति की धड़कन रेडियो डीएस।
1: देखो आप सजे धजे के ऑफिस के लिए निकल चुके हो, सलाम है आपको, लेकिन मेरे लिए साल का सबसे मुश्किल समय, क्योंकि मौत आ जाती है इस फैसले को करने में कि आज नहाऊं या नहीं नहाऊं। अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया, गाने का नाम था फिर और क्या चाहिए। चाय चाहिए गर्मा गर्म, लेकिन इस वक्त चाय लेने तो मैं जा रहा हूँ, पर आप कहीं मत जाना, चार गाने आपके लिए बैक टू बैक।
0: गंगापुर स्थिति की धड़कन रेडियो डीएस।

गाने हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। हम हर सिचुएशन में गाने सुनते हैं, चाहे शादी हो, पार्टी हो, दिल टूटा हो, ब्रेकअप हुआ हो, चाहे हमें बहुत खुशी हो, हम क्रिकेट मैच जीते हो, गणेश उत्सव हो, मोटिवेशन चाहिए हो तो भी गाने। इसीलिए आपकी तरफ बहुत ही खूबसूरत गाना 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। 89.6 पे

0: बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें तो उसमें गीत और संगीत एक अहम भूमिका निभाता है। इन दोनों का रिश्ता कहें तो आत्मा और शरीर का ही है। आज के वक्त में अगर सिनेमा इतना सक्सेसफुल हुआ है तो उसका एक बड़ा रीजन है गाने। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना आपकी ओर 89.6 DSFM पे मैं तनिषा।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ. हिंदी सिनेमा में संगीत के लिए पहला अवार्ड नौशाद साहब ने 1954 में बेजू बावरा फिल्म के लिए जीता. इसके अलावा मदर इंडिया, मुगले आजम का मधुर संगीत भी हमें नौशाद साहब ने ही दिया है. चलिए सुनते हैं इन्हीं फिल्मों के कुछ गीत. 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: इसमें है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। अभी जो गीत आपने सुना वो फिल्म 5 अगस्त 1960 में रिलीज हुई के हासिफ साहब के शानदार डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आज भी हम सभी के दिलों में है। ये हिंदी सिनेमा के सबसे सफल फिल्मों में से एक है। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म के कुछ गीत 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, कब की हो गई, लेकिन मेरी आपकी शुरुआत अभी होगी क्योंकि भैया शो अभी चालू होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ शायरी पेश करो। करूँ ना? अच्छा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए शायरी पेश करता हूँ। शायरी कुछ ऐसी है कि द वेट ऑफ वर्ड्स इज नोन बाय द वे वी स्पीक, अदरवाइज वेलकम इज रिटन ऑन द वॉल्स टू। ये शायरी नहीं है, लेकिन जो अब मैं प्ले करने वाला हूँ वो गाने जरूर है, तो फिर एंजॉय करो, आराम से बैठो, बैक टू बैक चार गाने आपके लिए।
2: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।

0: गंगापुर स्थिति की धरतर।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: husband.
1: गौर फरमाना मेरे बात पे कि फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, अब आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई आई हाई आई हाई आई हाई। मेरी शायरी की तरह आपका दिन भैया बुरा नहीं, बहुत ही शानदार जाने वाले, क्योंकि मैं प्ले करने वाला हूँ आपके लिए अमेजिंग बैक टू बैक चार गाने ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस
0: गंगापुर सिटी की धरती। Radio DS.

0: सिंगापुर स्थिति की धरती।
1: क्या बात है, क्या बात है। जिस डेडिकेशन के साथ आपने इस गाने को एंजॉय किया, उसी डेडिकेशन के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इन लाइंस को भी एंजॉय करो। चलो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कह दिया उसने अलविदा, कह दिया उसने अलविदा, जिसने कभी जुदा होने के बारे में सोचा भी नहीं था। वाह वाह वाह, अरे अरे अरे, नहीं मैं आपको डेडिकेट नहीं कर रहा ये लाइंस, ना मैं खुद को कर रहा हूँ। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आज का शो यहीं तक।

0: दोबारा मिलेंगे कल। फिलहाल आप ट्यून इन रहो 89.6 रेडियो डीएस पे,
1: गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में हम बात करेंगे सन 1991 में प्रदर्शित राज कपूर साहब की महत्वाकांक्षी अंतिम फिल्म हिना के बारे में। फिल्म हिना में ऋषि कपूर साहब और पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म में करिश्मा कपूर का भी काम करने का बहुत मन था। वो अपने दादा की फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम करना चाहती थी, लेकिन उनके दादा यानी राज कपूर साहब ने फिल्म में चिंटू अंकल यानी ऋषि कपूर साहब को ले लिया था, इसीलिए उनका सपना पूरा नहीं हो सका और वो फिल्म हिना का हिस्सा नहीं बन पाई। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। आज सफरनामे में हम बात कर रहे हैं फिल्म हिना की। 1991 में बनी इस फिल्म को ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा, निर्माण और निर्देशन रणधीर कपूर ने किया। मुख्य कलाकार इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब, जेबा बख्तियार और अश्विनी रहे। इस फिल्म का एक बहुत सुंदर गीत है, चिट्ठियां दर्द फिराक वालिया। इसके गीतकार हैं नक्श लालपुरी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। फिल्म हिना के बारे में बात हो रही है और उसके टाइटल सॉन्ग की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्म हिना के टाइटल गीत के लिए जब बातचीत चल रही थी तब राज कपूर साहब ने रविंद्र जैन साहब जिनका इस फिल्म में संगीत था उनको समझाया कि नायिका हिना का इंट्रोडक्शन सीन है जिसमें वो अपने बारे में खुद को बताती है। इस सिचुएशन पर गीत चाहिए, रविंद्र जैन साहब लिख कर लाए। मैं हूँ खुश रंग हिना, जिंदगी में कोई रंग नहीं मेरे बिना। ये सुनकर राज कपूर साहब बहुत खुश हुए और कहा कि बिल्कुल ऐसे ही मुखड़े की उन्हें उम्मीद थी। यही कुछ बातें थी राज कपूर साहब के बारे में। फिर आपसे मिलूंगी, अभी के लिए इतना ही। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।